0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। मगरबी जापान के नारा शहर में बुध के रोज बहुत से लोगों ने उस मकाम पर फूल रखे जहां साबिक जापानी वजीर आजम आबे शिंजो को 4 साल कबल इंतखाबी मुहिम की तकरीर के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। फायरिंग का ये वाकया 8 जुलाई 2022 को यामातो साई दाईजी स्टेशन के करीब पेश आया था। क्योतो शहर से ताल्लुक रखने वाले 60 के बेटे के एक शख्स ने यादगारी चबूतरे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे रहनुमा थे और ये कि उन्होंने अनजानी वजीर आजम से दरख्वास्त की थी कि वो मुल्क का ख्याल रखें। क्योतो ही से ताल्लुक रखने वाले 20 के बेटे के एक शख्स ने कहा कि 4 साल तेजी से गुजर गए। उन्होंने मजीद कहा वो चाहते हैं कि अगली नस्ल ये जान ले कि एक सियासतदान को तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया। जनवरी में नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 45 साल यामागामी तत्सुया को साबिक वजीर आजम को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वकलाए सफाई ने फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है। मुकदमे की पहली समाअत में तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि सजा की शिद्दत और यामागामी के परवरिश को कितना वजन दिया जाना चाहिए। उसकी वालदा की जानिब से माजी में यूनिफिकेशन चर्च कहलाई जाने वाली मजहबी तंजीम को बड़े अतियात दिए जाने के बायस उसके खानदान को माली तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह मामला दूसरी समात में भी कलीदी नुक्ता रहने का इम्कान है। एक बड़ा और इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मुमकिन तौर पर जुमा से हफ्ता तक जनूब मगरबी जापान में ओकिनावा प्रीफेक्चर के करीब आ सकता है। जापान के मौसमियाती हुक्काम वहां के लोगों से अपील कर रहे हैं कि तूफान से महफूज रहने के लिए कबल अज वक्त तैयारियां कर ली जाएं। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि समंदरी तूफान बावी बुध की सुबह 6 बजे तक फिलिपाइन के मशरिक में समंदर के ऊपर मगरिब की जानिब बढ़ रहा था। इम्कान है कि यह ताकतवर तूफान अपना जोर बरकरार रखते हुए ओकिनावा में साकिशिमा जजायर के करीब आएगा। जुमा को साकिशिमा जजायर पर हवा के झकड़ों की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। इस कदर तेज हवाएं बाज घरों को गिराने की सलाहियत रखती हैं। मस्कूरा इलाके में मौजों में तुगयानी और बुलंद लहरें देखने में आ सकती हैं और उनके साथ साथ इंतबाह की सतह की तूफानी शिद्दत और मूसलाधार बारिश हो सकती है। 3 जापानी कंपनियों ने बायोडीजल ईंधन से चलने वाले ट्रकों के लिए तवील फासले के सफर की आजमाइश के मनसूबों का ऐलान किया है। एक नाम ऐसे वक्त सामने आया है जब लॉजिस्टिक कंपनियां तेजी से इस ईंधन का बतौर मुतबादल माहौल दोस्त फ्यूल इंतखाब कर रही हैं। ट्रक बनाने वाली कंपनी इसुजू मोटर्स, खुद मुख्तार ड्राइविंग सिस्टम तैयार करने वाले फर्म T2 और तवानाई की कंपनी इदेमित्सु कोसान इस मनसूबे में शामिल हैं। आजमाइशी सफर इस मौसम गर्मा में कानागावा और ह्योगो प्रीफेक्चरों के दरमियान 500 किलोमीटर तवील रास्ते पर शुरू किए जाएंगे। कंपनियां इस बात का जायजा लेना चाहती हैं कि बायोडीजल का इस्तेमाल हल्के तेल के मुकाबले में ट्रकों की पायदारी और उनकी ईंधन की कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज होगा। कंपनियों का कहना है कि उनका बायोडीजल इस्तेमाल शुदा नबाताती कुकिंग ऑयल और दीगर मवाद से तैयार किया जाता है। उनका मजीद कहना है कि यह ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के खराज को कम करने में मदद कर सकता है। कंपनियां अब बायोडीजल के इस्तेमाल को बढ़ाने के तरीके तलाश कर रही हैं ताकि उसकी निस्बतन ज्यादा लागत को कम किया जा सके।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।